0: आप सुन रहे हैं रेडियो अमन 88.4 की नशरियात, हमारे साथ रहिएगा।
1: तासु औरे रेडियो अमन।

0: रेडियो अमन करक आपको दे रहा है एक खुशखबरी। अब आप अपने दिल की आवाज रेडियो अमन करक के साथ मैसेज के जरिए भी शेयर कर सकते हैं। अब आप हर प्रोग्राम में फॉर्मेट के मुताबिक अपनी फरमाइशों और चाहतों का इजहार मैसेज के जरिए कर सकते हैं। मैसेज करने का तरीका बहुत ही आसान है। अपने मोबाइल के राइट मैसेज ऑप्शन में जाएं, वहां पर टाइप करें RAK, फिर थोड़ी सी जगह छोड़कर अपना नाम लिखें, फिर अपने इलाके का नाम और अपना पैगाम लिखकर हमें 8583 यानी 8583 पर भेजें। आपका मैसेज हमारे प्रोग्राम की रौनक।
1: क्या आप चाहते हैं कि आपका कारोबार एक नए बुलंदियों तक पहुंचे? क्या आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत का हर लम्हा आपके लिए फायदेमंद साबित हो? तो देर किस बात की, हम आपको दे रहे हैं वो हल जो आपके कारोबार को देगा एक नई रफ्तार। हमारी खिदमत आपके कारोबार को नई मार्केट तक पहुंचाने में मददगार साबित होगी। आज ही हमसे राबता करें और अपने कारोबार को बढ़ाने का ख्वाब हकीकत में बदलें, क्योंकि कामयाबी के सफर में हम हैं आपके साथ। राबता नंबर 0345-9332-580।
2: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.

0: बस दा यो कुदरती मने कना कैफियत ता चीचा काल ने भी कड़े कना तो सदा सीखे जी बहरहाल नो प्रॉब्लम सदा से खबर है ना दा सड़े बमा छे सा हां वो स्टफ दे चाय छे सके जे मौसम सोट जो कना बे हम बखोड़े खरो पे वीजो काम तर कले वे कना बे अबे बेचारा राज भाई वो सब को नो राज भाई पहले देता भी आई के वो स्टफ दे चाय छे सा स्नी चाय देर छे लैला खान भी कहना चाहिए माकड़े सिंगार दे सिंगार जी बिल्कुल दहा सिफात कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान जी प्रोडक्ट माशाल्लाह यूज कभी इस्तेमाल भी पैसा गुरु नेक्स्ट कलर अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू अलावा गरम से गड़े और रोड में सोख तरस रखीम जना फैजान भाई दे टांग ना स्थड़े माशे तू तो ढेर ढेर हरकल है दे टांग ना माशाल्लाह माशाल्लाह बस जनात गोल से सा उधर तो वैसे ठांके दगावूज मुसफा सफा खुद इरसी का ना अच्छा अच्छा अच्छा फैजान दारू तो वैसे चार लिया तिशी कवे रोज जाना है चार लिया तिशी कवे कार रोजगार तिशाई कवे चार खो न दे कहना सफा खबर अब कवे दा खुद चार दा चबा चार खो न दे
1: कहना
0: तब या डेर खुआ दून प्रोग्राम खोलाए शाह दगा से रखे वेता नोस वे और गाने पियावे और सारा प्रोग्राम और माशाल्लाह या काल मिला जी खबर है वैसे मा मा मा मा दास चाल वके कहना गुरे पोमियर मने बो गर्ज दास चाल वके जदे तरिश्तिया ए लके फायदे वाला खबर कहो कहना पो सिफात का स्मेडिस के तू तो सन ब्लॉक में लावशी यूट्यूब तो मिलावशी आगा रोखला कहना यानी हाँ हाँ हाँ हाँ आगा बो तू तो रोख ली बुदा मख ये लगा वाह चे कला हुआ गानो पसे से शाह दास बदे दा मख मजदूर सूड़ भी कहना दास बो शश दे तला की दा मख जोन का ना चे सदे तविया सौकाद है सौकाद है बिल्कुल कभी आप पाते नहीं दे की गना सलीम कटी खैर से ठाक के दा चेता मिला जी शाह जरबत खान जिसे जोन वरस हवा या कुंडी कोर्ट के इब्राहिम भाई जोन वरस हवा चे मोहता सिफात के अगर सन ब्लॉक चिदाय कहना सनस्क्रीन सन ब्लॉक वाला रोक कहना अच्छा शाही दीजिए बा मख मंदे लागे राज भाई रोता विलु तय वो लगवा मोहता प्रोग्राम के ब्याह हुआ ऐसा अर्जोन दड़ा है ए तुम अर्जोन द्रोन न दाय कहना चाहिए उस दा टेंशन वना की चिदा वो पता नश्ता चुम रही डेर अर्जोन दाम ए दा तकरीबन तुस्त मिला भी चिकाल बांसी पे तवे ऐसा कुरबान कुरबान यो जहान मंदे कहूँ काल की ऊश वाल कहना नूर करुना खरू सीचा था दुआ सलाम कुरबान उस फूल वाले जाऊ दिरसी अच्छा नदर जी कहना रोसरा वो रहा उदाट सोच पे कवाची दा बुद्ध शैवी शाह साहिदा दिकाल के वाले यो जहान मनना है ख्वाश शोल रहो तो से फिजन गोला खपा नशे टेम डेर काम ही सिफर 332 छियानवे दास 329 दिला रहे बैक टू बैक से फाक कास्मेट इस पाकिस्तान के जे दिकाल सिलसिला चारी दा जर जर काल का वाला शै अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू सुख फिर सरा हेलो हेलो जी जी वालेकुम अस्सलाम सुख तिरसरा वोज मुल्लश की कमजोर है दा काम दा शा ठीक था जी जी वो रुआ जी सो कर सा खबर के किम से ना माशाल्लाह जोनी स्टडे माशे जोनी दा तो आवाज वेले दा से काम का मरसी जाखो बिल्कुल सही और के में सरंगे दा शादा शदे वकड़ल तो से पल प्रोग्राम दा काल हो कवाई कना चे तो से काल न कवाई बे अब सरंगे तरीका जोड़ी जी काल कवाई माशाल्लाह पतो से मने प्रोग्राम सुष्टा विच सुमरा हमी नवाल दी बस खो रखे दागा दा कना चे माशाल्लाह दा मीनावालो मीनावी कना कागा दे टांग मीनावाल दी कागा दे करख माशा सुमरा मीनावाल दी दा प्रोग्राम सरे मीना लारी शाह जकत काल मने जेड ज्योत रशवी हफ्तावार प्रोग्राम खोने दा डेली प्रोग्राम दा कहना

जिनर कॉस्मेटिक्स, जिनर ग्लोट व्हाइट ब्यूटी क्रीम और जिनर ग्लोट व्हाइट फेस वॉश तासु यूज को वली शिखपल फेस व्हाइटनिंग दपारा और तासु दबा रिजल्ट दर कभी ए1 सही था ना।

हाँ जी दी सरस राम तासो वुड्स है बल चाहता टाउन के मदीना बिखरे था तासो वर्षे और दी सरस राम पडुमिल के सदफ कॉस्मेटिक्स था लतमर के बिलाल कॉस्मेटिक्स था बिलाल क्लॉथ एंड कॉस्मेटिक्स वर्षे जिन्हें लवा मंगल में लेके वसीम और रहमान रात वर्ष लाई

हाँ और दिन को नौ दी सरस राम तासु वर्षे बोलो छाता तासु वर्षे हमें दोनों के मखोलक प्लस देता दिने लवा मखोलक प्लस की चुकुम कॉस्मेटिक्स टोल सर मिले विज देगा जिनर कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट पास होना इस राम और दी सरस राम पाओ तख्ती सर दिखे ताऊ सबा लबीब कॉस्मेटिक्स राम फाइव ट्रेडर सराम

0: तड़ाई माशी मिर्जी दार तो ये जो पता शापर सी देता शाय हो खस्ती थी
1: जनाती से तार खाना पर शापर के हमें इश्मा वाशिंग पाउडर हो खस्ती थी
0: इश्मा वाशिंग पाउडर मड़ाई मिर्जी मोह कोरता नेशनल और मल्टी नेशनल कपने वल वाशिंग पाउडर वड़ी भी कुर्श अक्सर गिलार तक की जो दस रंगे सरा प्रोब रही
1: बिल्कुल तार खाना दा गिले वे हर वक्त मुताहा कुर्श डाले हो चे कराना में कुर्ता इश्मा वाशिंग पाउडर वडल से रिकड़े दी वो स्टोल कुर वाला नकवासोल दी
0: अच्छा मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सर अब उदार या चेप इश्मा वाशिंग पाउडर से सदा से खास खासियात थी
1: तारे खाना इश्मा वाशिंग पाउडर खास खासियात दागा दी चे कपड़े सब युक्शले को जोर ना जोर दाग पर गारंटे सर खत्म करी जाकर सजूद की वो दिनोर सरफे पर नस्बात इश्मा वाशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर अदा कपड़े सपई पवात लोसीना न खर पवी
0: शाम इस जी चे दम रक्षला रिजल्ट ये दाए दार तो ये दाव मोता चेरता मिला भी जी
1: तारे खाना दाव तो दफ बने गल से अंदरून ला की गेट जान से बे गाले पर शे मार्किट से देश मा मेन डिस्ट्रीब्यूटर हाफे जहीर सेब सारा उधर ता मिला भी जी।

हाँ जी बिल्कुल, प्रोग्राम इसमें कॉस्मेटिक दें तो कॉल बजे से मिलो प्रोग्राम के मैसेजेस हम चाहो तो कम दिन हम तो मैसेज करे चाहो तो कम दिन हम तो कॉल कवल वाड़ी नो कॉल कवल इसे आओ कमा फर्स्ट टाइम सुग प्रोग्राम की इन्हें मतलब चार रेडियो ट्यून करे दम आवाज़ उड़ी अब वही जरा दा सुग प्रोग्राम तरह लो इसमें कॉस्मेटिक प्रोग्राम तरह लो बिल्कुल माता वेली शीश सुपर जफर तारीख

फाडुमेल बाजार के सदब कॉस्मेटिक्स से मिलावेगी, अंबेरी कला की इमरान बेकरी से मिलावेगी, उरूसा शॉपिंग सेंटर से हम मिलावेगी, अहमदाबाद मेले की चिकंदी मिलावेगी, दस्ता मुबशीर और समी कॉस्मेटिक्स से हम मिलावेगी, दिन अलावा रहमताबाद की चिकंदी वाहिद कॉस्मेटिक्स अहमदाबाद की हम मिलावेगी, दिन अलावा तो मिलावेगी बिल्कुल तो मिलावेगी कुर्बान छे बहादुर खेल की आशिक कॉस्मेटिक्स हम मिलावेगी बिल्कुल तासु आशिक कॉस्मेटिक्स हम मरते शेख पल जाना पर टूल प्रोडक्ट्स कुर्बान रागस्ते शे पति खातिर बांधे इतना इसलो मुकम्मल कुर्बान रिजल्ट दर कभी खा तासु द रिजल्ट द टूल खबर कुर्बान बिल्कुल पाबंदी मामाते टेलीफोन कॉल कोली शे पास 0-3-7-0-3-2-5-1-2-7-5

0: It's 7 o'clock.
1: It's 7 o'clock.
0: Hourly Time Check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.
2: आप सुन रहे हैं रेडियो मन 88.4 करक, जहां मौसीकी मालूमात, इस्लामिक प्रोग्राम और एंटरटेनमेंट शो हमेशा आपके साथ रहते हैं। रेडियो मन 88.4 करक, आपकी आवाज़, आपका एहसास।

जी नमोहतरम और दुन को बिल्कुल दे तो सिलाई काल से सिला हम शुरू को जा कदा वक्त दा प्रोग्राम तो सुर हुई न लाइव काल रो तो कि खपल मेजबान आर जे शाहिद खान ता द लाइव काल नंबर दे 0330 0344 717 जी हां 0330 0330

हाँ कि जी दे तो से लाइव कॉलर रवन दी जी अगाव हाँ शामिल अभी शिफा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान से शिफा कंपनी शिफा ब्यूटी क्रीम दुनी दुगीना डबीना तरसराय दिमाग गंजा दिमाग तुरवलो हमेशा दे पुरा खत्म गोल्डन कलर से जेड कलर डबी वाला शिफा कंपनी शिफा ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल एक वर्षरा यू आदत फेस वॉश और बला खबरदार यू आदत विटामिन सी फेस वॉश दर सरा इस्तेमाल की बेहतरीन खुला बेहतरीन फायदा बेहतरीन स्पिन वाला उधर की और जनाब छोटी में विश्वी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह हजी वालेकुम सलाम आमना टेलर डीएम कॉल करे हो जो खवाजी विच खबर चगे न शकवा ویسے چھوڑا اور دن کی تمہیں سلومینا ورکا چوٹی میں وشتا سبا انتا زارا دورانی تا اور جناب دینا الہوا دیر نومینا یو خوز دلو

जी जना बदायो आवोस दिमो दे तरफ ना दिमो दे ठोले यूरो ने दोस्तों ने अजीजों ने दे पुराम दा वक्त दे मुसरा शिफा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान और भी न दे आरजे शाहिद खान न तरफ ना दावोस कबूल कीजिए।

0: मल्लू साहेब अभी आई छे काल में ना अटेंड कीजिए वेले ना अटेंड कीजिए सवा जादू होबार के काल होवा का कना रेडियो बन का अस्सलाम वालेकुम जी सो खबर कहे जी हाँ डमिल ना सो खबर के अच्छा माए वसाय अला दे नोम हर राम दाई लरा वाला दा तो हर राम दाई लरी जी प्रोग्राम रो सारा वरु है मुता जे सुकरो गली दी खबरे वियरे सोवी दी खुशेर रोता हुआ है जी
1: ठीक
0: सुनाओ तरफ ना तह डेर डेर सलोमीना का बिल का ठीक है चलो माजरत घोड़ा जी बख्शना घोड़ा कल अटेंड के भी हो कल कल दस चाल की जी सा चलो चलो जी सही सा जरूर भी लगा ठीक है ओके जी वालेकुम अस्सलाम दे कल कॉल ढेर मनना थैंक यू मिरली तक कलोड़े नो अमीन कॉस्मेटिक्स लाची मार्केट मिरली शहर याकूब कॉस्मेटिक लाची मार्केट मिरली जासिम भाई लाची मार्केट मिरली लोलो शॉपिंग सेंटर तारिक मार्केट मिरली अंदलीब इदक बजूर शे सलाहुद्दीन इदक बजूर अफगान कॉस्मेटिक्स हदी बजूर शे शिफा कॉस्मेटिक्स टोल प्रोडक्ट अवेलेबल मिरान शाह शे रजा शाह कॉस्मेटिक्स अमन मार्केट मिरान शाह तारिक कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान मार्केट मिरान शाह जाहिद पाकिस्तान मार्केट मिरान शाह और शारजा जनरल स्टोर मिरान शाह प्लाजा दोसली और दिन किदा मुजीब कॉस्मेटिक्स दोसली अहमद नाज दोसली सरा और अजमक शे अमीर शाहजेब जनरल स्टोर राजमक शाहजक जनरल स्टोर राजमक और इब्राहिम जनरल स्टोर राजमक शिफा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान टोल प्रोडक्ट अवेलेबल दिवर नवे इस्तेमाल

जी अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम ठोल उम्मीद वालों तो प्रोग्राम के जिस याद हर कले उम्मीद है जैसे बोई और दिल ना सेहत पे जमो के बोई और सर सनन बुध व्रत से कम देशा से बर्दाश्त हम तेरे कड़ी भी पलक पलक चार बम कड़ी भी और देखा मलिक मौजूद भी पल कोरोना के और दिन लवा रेडियो मनाटसी शेरे चार करक फ्रीक्वेंसी वाने बहा तो ट्यून कड़ी मतलब प्रोग्राम वो ट्यून कड़े भी नोट हो लुमीन वालू था क्या बुढ़ा गांधी मुशरान दी और न्यू कड़ी दी दिन है लवा अम्मी गानी दी जवानां दी ठोल दखर गले

0: Τώρα μαζί με ζητάρ το βγαίνει από τα σαπάρ σε τόσα έχω χωστηθεί.
1: Για να τίσε τα ρεχανά από σαπάρ και έχω με ίσμα βάσινγκ πόρταρ έχω χωστηθεί.
0: Έσμα βάσινγκ πόρταρ, μάρα με ζητή μόχο κορτά national or multinational καπνέιβολ βάσινγκ πόρταρ βοήβη. Κούρσε αξάρ γιλάρ τα κίσε τα σαράγγε σαρά προβρή.
1: Βέλκολ τα ρεχανά τα γιλεβε χάρβαχτε μουτάχα κούρσε κραλέ. Ο τσεκάρανα με κούρτα ίσμα βάσινγκ πόρταρ βοήβολ σε ρικρέτη, ο στόλ κούρβολα να χωσούλτη.
0: अच्छा मिस जी ब्याह कुर्ता जहर सरावरो उदार तो ये या चेप इश्मा वाशिंग पाउडर से सदा से खास खासियत थी
1: तारे खाना इश्मा वाशिंग पाउडर खास खासियत दागा दी चे कपड़े सा पयुक्षले को जोर ना जोर दाग पर गारंटी सर खत्म करी जाखर सजूद की वो दिनोर सरफे पर नस्बत इश्मा वाशिंग पाउडर काम इस्तेमाल जी और बला खबर दा कपड़े सा पई पवा लोसीना नखर पवी
0: शाह मिस जी चे दम रक्षला

0: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. You are listening to Radio Aman Network.
1: We got more hits for you, so stay tuned.
0: 88.4 FM.
2: कभी मुसीकी के लिए सुने, कभी खूबसूरत बातों के लिए और कभी नई मालूमात के लिए आपके सुनने का खूबसूरत इंतेहाब रेडियो अमन 88.4 करक।

0: मुस्कुराहटों के लिए खुशियों की आवाज़, आपका अपना रेडियो हर पल आपके पास, तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 करक जवान रंग अमन।
1: क्या आप चाहते हैं कि आपका कारोबार एक नए बुलंदियों तक पहुंचे? क्या आप चाहते हैं कि आपकी मेहनत का हर लम्हा आपके लिए फायदेमंद साबित हो? तो देर किस बात की, हम आपको दे रहे हैं वो हल जो आपके कारोबार को देगा एक नई रफ्तार। हमारी खिदमत आपके कारोबार को नई मार्केट तक पहुंचाने में मददगार साबित होगी। आज ही हमसे राबता करें और अपने कारोबार को बढ़ाने का ख्वाब हकीकत में बदलें, क्योंकि कामयाबी के सफर में हम हैं आपके साथ। राबता नंबर 0345 93 32 580।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो मन 88.4 करक, जहां मुसिकी मालूमात, इस्लामिक प्रोग्राम और एंटरटेनमेंट शो हमेशा आपके साथ रहते हैं। रेडियो मन 88.4 करक, आपकी आवाज, आपका एहसास।
1: Chit Chat Show.
2: The Awaaz De The Aman. The Awaaz De The Pakistan. The Awaaz De The Radio Aman 88.4 Network.
1: Chit Chat Show.
3: दिन हो या रात, खुशी हो या तन्हाई, हर वक्त एक आवाज साथ हो। रेडियो अमन 88.4 कारक, आपके हर लम्हे का साथी।
4: रेडियो अमन, कभी नरम कभी गरम, म्यूजिक मस्ती और खूबसूरत पैगाम। हम लेके आएंगे मोहब्बत के एहसास का खूबसूरत अंदाज। रेडियो अमन, आपके मन का अमन।

आप सुन रहे हैं रेडियो मन 88.4 करक, जहां मुसिकी मालूमात, इस्लामिक प्रोग्राम और एंटरटेनमेंट शो हमेशा आपके साथ रहते हैं। रेडियो मन 88.4 करक, आपकी आवाज़, आपका एहसास।

रेडियो अमन, कभी नरम कभी गरम। म्यूजिक, मस्ती और खूबसूरत पैगाम हम लेके आएंगे, मोहब्बत के एहसास का खूबसूरत अंदाज। रेडियो अमन, आपके मन का अमन।

थैंक यू डेरा जी, तुम्हारा नाम अमाना था तक सब जी हाँ करेक्ट ना सलाम स्वीट बाई सरंग ये शो डेरा शो दे वोर वो डेरा मजा के डेरा मना ना यो जहान मना वजी हाँ लोया खास या हाँ वजी हाँ मैसेज करने दे करेक्ट ना सद फाता क्यों टू शिहान था गुल लाई था चुल गुल गुल गुल सलाम वालेकुम असलाम डेरा डेरा मना ना